अजय बसे तो खुदे के हुए फिर उड़ा रहा कुछ किसे खेल में दारे जो मैंने शवा दिमाग के